साहब जी कहन लगे मरदाने जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा है कि हुण किसी ने रुपया पाया रुपये तो घट पैसे पाए घट खड़ाक होया ते अंदाजा लगा लिया कि इन्ने क पैसे पाए ने मरदाने है। इस जोगी राज ने अखा ता बंद कीतियां ने पर ए परमेश्वर नाल नहीं संदूखड़ी दे नाल जुड़िया होया ए ता अखा बंद करके पैसे दा हिसाब पिया लगांदा है कि संदूखड़ी विच किन्ने क पैसे जमा हो गए। मरदाना कहन लगा महाराज ये किस तरह हो सकता है। साहब जी कहन लगे जे देखना है ते जेड़ी संदूखड़ी एदे सामने पई है चुक के एदे पिछे रख दे। मरदाना उठिया उस जोगी राज दे सामने संदूखड़ी चुकी ओदे पिछे रख दिती अपनी जगह ते आके फिर बैठ गए। थोड़ी देर दे बाद उस जोगी राज ने अखां खोलियां बैठियां लोकां वाल देखिया ता ए गल कही ऐ संत जनो आज हम आप लोगों को तीनों लोकों की बातें सुनाएंगे। आज हम ब्रह्मपुरी में गए वहां वेदों की कथा हो रही थी फिर हम विष्णुपुरी में गए

साहबानी उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ऐ भाई पखंड छड दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिन्ना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

तीसरी कुटिया विचों आवाज आई बिंद्रा बन ते बिंद्रा बन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले जिन्हां चिटियां धोतियां बनियां ने गला विच माला हाथ विच माला ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नू गली बाती जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खोलिया। इस सेठ नू जानू मारन लगे ने पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे भाई की गल है तेरा बहुत बुरा हाल है तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया मैं ता संत समझे पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली मैनू जानू मार देन लगे सन पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे हां। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ओ संत नहीं पता है ओ कौन ने। कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नु कहा नारायण मतलब के कोई बंदा आया। ओदी आवाज सुन के दूसरे ने कहा दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती। ते तीसरे ने कहा बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे। ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोहना ते काम इन्ने माड़े। ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इवें बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

वसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बाल देने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाने।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेकी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेकी संत ने अपना आसन चुकया, ओ माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वां

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तित्तर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तित्तर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर ए खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनासरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी फैले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तेनू बख्शे। तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया, जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना, ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनता कीतिया हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल शिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते, क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे। भाई जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

0: हर अखो सतनाम।
1: जिथे बाबा पैर जिस धरती ते चरण पाए उस स्थान से पूजा अकाल पुरख भी शुरू हो गई। ते जे किसे प्यार वाले दे हिरदे दे विच चरण पाए उस हिरदे विचों भी अकाल पुरख की पूजा शुरू हो गई। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ। माण करो जिस दयालता दी जिस कृपा दे उत्ते गुरु नानक दी सोई पहुंची है किसे दी नहीं पहुंची। बाबा जी वचन कर दे सी गुरु नानक साहब जी दे दुनिया नू तारन दे विच चार विशेष गुण सन। चार विशेष गुण की सब तो पहला विशेष गुण के अज तक किते मिसाल नहीं के अवतार पापी दे घर चल के गया होवे आवी झोली पर दात लै लै। आखो सतनाम। दूसरी विशेष गल जिन्नू भी तारिया बाणी दा तीर मार के सात संगत। तीजी विशेष गल जिन्नू भी तारिया उदा पिछला लेखा नहीं पुछया। अज के आखो सतनाम। नहीं तो लेखा तो है ना। पर तुहाडे सामने मिसाल है कि सजन ठग का पिछला खाता किथे गया। जी के आखो सतनाम। माण करो ये गुरु नानक। दीपालपुर कौड़ी का पिछला लेखा किथे गया। कौडे राक्षस का भूमि चौर का बली कंधारी का सतगुर गुणी निधान है गुण कर बख्शे अवगण आरे। किते ते सजा दे के औगण नूं बख्शिया जांदा किते गुण कोलों दे के औगण लै के इंज औगण बख्शे जांदे। ए तीजी विशेषता पिछला लेखा नहीं पुछिया। पिछला साव नहीं पुछिया गुरु प्यारे। हुण इक चौथी गल सुनो फिर होर प्यार आ जांदा। गुरु नानक दे तारण विच चौथी विशेषता कि जिदे ते नजर कीती है उनू केवल तारिया नहीं उदी इन्नी क बैटरी चार्ज करती कि अगों कईयां नू तारन वाला बना दिता। गज के आखो सतनाम। बड़ी वड्डी गल है। इक ते इक नू तार दिता उनू अगों जोगा बना कोई ले लो सज्जन ठग नू लाके दा थापता लै हुण तू देख उहदा केवल उन्हों नहीं अगों तारण योग। सालसराय गौरी नू निरी उहदी अख नहीं खोली नाल मंजी दे दित्ती। आ इन्ने साल तेरी उमर ही तेरे बादों तेरा नौकर बैठेगा अधरका। वह फिर इस सारे इलाके नू निरंकार दे घर चों दातां लैके गज के आखो सतनाम। ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀਏ।

ताकि सुते है एडी गूढ़ी नींद आई है कि एक मेरी पासा भी नहीं पड़ी। निरंकार ने वडेरी अवस्था विच इको एक पुत दिता है और उसनू कोई ना कोई रोग लगा ही नहीं। कोई उसनू झला कहता है, कोई दीवाना कहता, कोई बावला कहता। मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे सन पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल। होर बच्चे माता पिता तो आके चीजा मंगते पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं खाते। पता नहीं कीड़ा रोग अंदर जाके सोता है। तीन दिन तो मेरा लाल भोजन पाया ही। जे धन गुरु नानक पातशाह जी ने भोजन नहीं सके तो ममता की मारी हुई मां माता तृप्ता ने भी मुंह च बुरकी नहीं पाई। जिस मां का पुत भुखा सो गया उस मां नू नींद नहीं दी। पुत सो गया है मां जाके उठा दी, काका भुखा क्यों सो गया? एक बुरकी तो मुंह च पाई। मां दी आंदर ठर जा बच्चा रज के प्रसाद छक लवे मां पहले रख ते मां का प्यार माता प्रीत करे पुत माता तृप्त इना ख्याल इना विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नु पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक और वेखण वाली वखो वक तृप्ता ने जाने सुत कालू ने जाने पुत लालू भतीजा जाने मूले जाने ते जवाई चंदो रानी जाने सरबंधी जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जानिया रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर पराए बुलार को प्रतीत भली आई है। श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कुराई आई। भावना सब तो वड्डी जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस्मर विश्वास ही वड्डी विश्वास ही सब तो वड्डी। असि कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मथा भी टेक पर मथा टेक के भी
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਵਜੇ ਇਹ

जिन्हां नूं दुश्मन भी अपने प्यारे लगदे हो। भाई कन्हैया ना अपना ना दुश्मन, गुरु दा मुख जान के पानी पिला दिंदा। ओ भाई कन्हैया जिन्हों गुरु कलगीधर पातशाह ने वो बख्शिश कीती कि आ जिथे भाई कन्हैया तू पानी पिलाउना आ मलम भी फट्टा ते ला दिया, आ सिख दा प्यार है, आ सिख दी भावना है, जिसनू बेगाने भी अपने लगते बस वो असल विच सिख है, पर होवे कोई भाई कन्हैया।

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बां फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावे दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा है, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर देंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करने वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब का पाठ करता जाता। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता है। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खान वर्गे जिन्हों का शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ ली बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखा का तो प्यार ही यह भावना ही यह जी हिरदे विच परपकार का बीज बोया होंदा है, इस वास्ते बां फड़ लेंगे दुखियां दा दुख।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे, आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा मान।

जिन्हां ने अपना आप निशावर कर दिता। साहिबान गुरु अर्जन देव पातशाह की सेवा जिथे झाड़ू की सेवा करता, जल सुकाउण की सेवा करता, उथे लंगर दियां लकड़ां भी लियांदा, जंगलों विचों लकड़ां कटनियां सिर ते चुकनियां लंगर विच लिया के सेवा करनी। पर अज इम्तिहान का परचा पै गया, भाई मंझ जी लकड़ां तां कटियां बन्नियां सिर ते चुक लिया, लकड़ां नूं सिर ते चुक

एक पुराना खूह, जिस खूह दे बनेरा भी कोई नहीं। भाई मांझ जी तुरे आउंदे ने रब दे रंग विच, उस प्यारे दे गीत गाउंदियां गाउंदियां बरसात जोर दी। पर जदों भाई मांझ जी उथों दी लंघण लगे पुराना खूह, भाई मांझ जी खूह विच डिग पए। अपने आप नूं संभालिया, लकड़ा नूं बोझिया, लकड़ा कितें डिग ना पए। पर एकदम खूह विच डिगे परे दरसा धन गुरु अर्जुन देव पातशाह। कीर्तन दा आनंद माणदिया एकदम संघासन तो हिले, भाई गुरदास जी नूं कहन लगे, भाई गुरदास मेरा प्यार वाला सिख भाई मांझ डिग पी।

دے نال صدق بندا ہے نام میٹھا لگدا ہے اس لئی میرے نال چلو ہوتی مردان سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں انہاں کول چل کے بینتی کردے ہیں کیونکہ مہاپرکھ تاں وہی ہے جیڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدا ہے جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے राजा बड़ी निम्रता दे नाल सिदक दे नाल महापुरख बाबा करम सिंह जी होती मर्दान वाले पास गया। ए ओ महापुरख सन जिहड़े जवानी विच फौज विच भर्ती सन आप दी समाधि लगी रही सारी रात ड्यूटी ते नहीं जा सके इन्हां दी थां ते ड्यूटी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने दिती ते जदों सवेरे गए ना मन विच सोचदे आ ना भई नौकरी तो जाए ही जाए पर अंग्रेज का राज है पता नहीं दंड की मिलेगा सजा की मिलेगी। ते जलो अगे गए तो अफसर बैठा होया सी उठ खड़ोता अपनी खुशी तो दस्त पंजा लिया ते कहन लगा करम सिंह मैं सारी रात सारिया नू चेक कीता पर जो ड्यूटी तू दिती है वो होर किसे नहीं दिती। उच्चारण करो श्री सात संगत जी कम से कम अगे बैठे होया दी बिरती जरूर जोड़नी चाहिए है समाधियां ला लो ये गर्मी तुहानू लगेगी नहीं जदों अमृत ठंडा पवेगा ना इस दे विच बस जुड़ जाओ गुरु दे चरणां विच उच्चारण करो श्री। एक दो मिनटां विच मैं आपनू बाणी दा प्रताप दसना ए ओ महापुरख जिन्हां दी थां ते आप कलगीधर पातशाह जी ने सारी रात ड्यूटी दित्ती। राजा जदों पहुंचिया महापुरखां ने आख्या जल पानी छका के संगत विच ही रह चलो। महापुरख संगत विच आप भी पहुंच गए समाप्ति होई कीर्तन दी ते सुख शांत पुछन लगे ता राजा रो पिया महाराज भई निरंकार ने राज भाग दुनिया दे सुख बख्शिश कीते सी पर नाल दुख भी बड़ा वड्डा ला दिता पगंदर दा फोड़ा निकला है ते आप कृपा करो। महापुरखा ने हाथ कीता गुरु ग्रंथ साहब वाल ओ भले पुरछा ठीक तो उन्हें करना है शरब रोग का छारे जपो शरब रोग का औखद साडा बच्चा बीमार होवे में डॉक्टर वाल अखां जुड़ जांदियां कोई मुकदमा पै जावे चंगे तो चंगे वकील वाल ध्यान जांदा पर ओ तनता दे योग हन जिन्हां दे हाथ जुड़ जांदे हन गुरु ग्रंथ साहब अगे महाराज तू कृपा कर। महापुरुष कहन लगे राजन बाणी दे विच सारे ही अमृत हन विच बाणी अमृत सारे ते पंज पाठ जप जी साहब दे रोज करेगा कह लगा महाराज मैं जरूर करांगा क्योंकि मौत सामने दिखाई दे रही है। महापुरखा ने कहा भाई जल विच खलो जावी अमृत वेले ते पंज पाठ जप जी साहब दे करनियां नूं उतना चिर उस फोड़े ते जल मलदा नहीं गुरु कृपा करेगा। प्यारी सात संगत जी महापुरखा दा वचन मनना क्योंकि गल तां वचन मनन नाल है ना। अमृत वेले उठ के राजे ने जो नितनेम आरंभ किया 40 दिनां दे अंदर अंदर पता ही नहीं लग्या फोड़ा कदे निकलिया भी सी के नहीं निकलिया। उच्चारण करो श्री तिस साहेब की टेक सारे जपो टेक गुरु के सिख नू बाणी दी है सिख दा साहेब है धन गुरु ग्रंथ साहब। एक बार प्यार नाल आखो धन गुरु ग्रंथ साहब ते फिर क्यों ना भाई

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आंदा ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आंदी है।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

नवनिध नाम निधान गृह तेरी मन बाचित सो लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी